दीजिएगा आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/saiyojanaamrit ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है।

0: ஆலயம் நியூசிலாந்து இந்து கோயில் சங்கம் பெருமையுடன் வழங்கும் வாராந்திர ஆன்மீக நிகழ்ச்சி ஆலயம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் காலை 8:30 முதல் 104.6 பிளானட் எஃப்எம் அலைவரிசையில் உங்களை மகிழ்விக்க வருகிறது ஆலயம். எங்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்க மறவாதீர்கள்.
1: पंजाबी मेरी जान वर्गी, पंजाबी मेरी पहचान वर्गी, पंजाबी बुजुर्ग दी दुआ वर्गी, पंजाबी निरे खुदा वर्गी, पंजाबी नानक दी रबाब वर्गी, पंजाबी कोरे जवाब वर्गी, पंजाबी चमक दे आफताब वर्गी, पंजाबी नैणा दे नीर वर्गी, पंजाबी सजना दे नां वर्गी ते पंजाबी बोर्ड दी छां वर्गी। भुल के भी ना इसनों भुलाउणा क्योंकि साडी पंजाबी है मां वर्गी। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 3:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:45 ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਤੇ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।

आत्मनिष्ठा। जो कुछ आपने स्वयं जाना है वही आपके लिए सत्य है, और जब आप उसको खो देते हैं आप सब कुछ खो देते हैं। आत्मनिष्ठा क्या है? आत्मनिष्ठा का अर्थ है जो कुछ आप जानते हैं उसको जानना। आप वही जानते हैं जो आप जानते हैं, और एवं उसे जानने का और जो कुछ आपने अवलोकन किया है उसे व्यक्त करने का साहस रखते हैं, यही निष्ठा है। निष्ठा इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। निश्चित ही हम सम्मान, सत्य, श्रेष्ठता, इस प्रकार के सभी गूढ़ शब्दों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इन सबको अच्छी तरह समझा जा सकता है। यदि हम जो कुछ देख रहे हैं वह वास्तव में वही है जो हम देख रहे हैं, देखते हुए हमने यह ध्यान रखा हो कि हम जो देख रहे हैं वह वही है जो हम देख रहे हैं, हमने सावधानी से उसका अवलोकन किया कि हमेशा हमने केवल अवलोकन करने के आशय से ही अवलोकन या निरीक्षण किया, संक्षेपूर्ण आलोचनात्मक

0: मक अथवा एक उदार मनोदशा से अवलोकन करना आवश्यक नहीं है इन मनोदशाओं को बनाए रखना भी आवश्यक नहीं है लेकिन निश्चित ही जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं उसको परखने और जो हम समझते हैं उसको व्यक्त करने के प्रति पर्याप्त आत्मनिष्ठा भरपूर व्यक्तिगत आस्था एवं आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना आवश्यक है जो कुछ आपने स्वयं जाना है वही आपके लिए सत्य है और जब आप उसको खो देते हैं आप सब कुछ खो देते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं डॉक्टर एल रॉन हर्बर्ट की और इन्हीं विचारों के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जगजीत जी के साथ जगजीत जी नमस्कार
1: नमस्कार जी
0: जगजीत जी आज आप हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं
1: जी इस बार हम जो स्टार साइन है यानी कि लियो के विषय में बात करेंगे
0: जी
1: जैसा कि लिसनर ने जानना चाहा है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि होरोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो इस राशि को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि इस राशि के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य और सूर्य होरोस्कोप में भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ तो सूर्य जो हैं वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं ये देखा गया है कि अगर होरोस्कोप में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो इंसान जितना ईमानदार रहता है जितना अच्छे कार्य करता है तो वो बहुत अच्छा जो प्रभाव है ये मिलता है अगर इस सृष्टि की भी बात की जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सूर्य के बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो चारों तरफ जो अंधकार रहेगा और मैं ये सोचता हूँ कि शायद जीवन ही ना बने
0: जी
1: तो सूर्य का जो महत्व है जिंदगी में बहुत है तो ऐसे ही होरोस्कोप की मैं अगर बात करता हूँ तो वहाँ भी जैसे मैंने बताया कि आत्मा के जो कारक हैं वो सूर्य हैं तो इस राशि के लिए जो लियो के लिए है जो ये साल है वो अच्छा रहने वाला है क्योंकि साल के शुरू में ही जो सूर्य बुध के जो योग हैं धनु में रहेंगे ये बिजनेस के लिए भी अच्छे योग बनते हैं क्योंकि जो बिजनेस का स्वामी है वो है जुपिटर का शनि के साथ अच्छे जो योग है ये इसी तरफ जो इशारा करते हैं वहीं धन के जो स्वामी हैं शुक्र भी पराक्रम भाव में आकर भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये जो योग रहते हैं ये जॉब के लिए बिजनेस के लिए या हमारी जो भी वित्तीय हैं उनके लिए कुछ अच्छे जो योग हैं ये बनते हैं परंतु इस साल जो खर्चे हैं ये कुछ अधिक हो सकते हैं उन पर जरूर नियंत्रण रखना चाहिए और इस तरह से जो ये कुछ योग बन रहे हैं अगर मैं बात करूं फेब महीने की तो उस वक्त जॉब में और बिजनेस में कुछ अच्छे जो संकेत हैं ये मिल रहे हैं इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो जॉब में आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपकी काफ़ी तारीफ हो और अगर आप बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं अगर आपने बिजनेस बढ़ा भी लिया है तो आपको इन महीनों में कुछ अच्छे जो रिजल्ट हैं ये देखने के जो योग हैं ये ज़रूर बनते हैं और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो मार्च का महीना जो रहेगा वो जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप सोचते हैं कि इस साल मेरा इस महीने में प्रमोशन होना चाहिए या मेरा कोई जॉब से रिलेटेड ये कार्य है तो ये समय उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा लेकिन मार्च के महीने में बिजनेस में कुछ उतराव चढ़ाव जरूर हो सकता है उसका कारण ये रहेगा कि आपका जो स्वभाव है उसमें थोड़ा सा जो क्रोध है ये जरूर रहेगा छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा है ये उन चीज़ों का बिजनेस में उतराव चढ़ाव का जो कारण है ये बन सकता है तो उस वक्त अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि बिजनेस के लिए भी वो समय अच्छा रहे और अगर बात करते हैं मई महीने का तो मई महीना जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है क्योंकि उस वक्त स्वास्थ्य से कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है तो उस

0: अपने जो खान पान है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी कोई दिनचर्या ऐसी है कि हम एक्सरसाइज करते हैं या उन चीज़ों को, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते, तो मई महीने में थोड़े से जो स्वास्थ्य है इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जून महीने में भी कुछ जो योग हैं अच्छे बनते हैं, चाहे वो जॉब रहे या बिजनेस रहे, लेकिन जुलाई का जो समय रहेगा उस वक्त थोड़ी सी जो सावधानी है ये जरूर बरतनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस रहे, जॉब रहे या पारिवारिक मसला रहे, क्योंकि उस वक्त कुछ ना कुछ जो वाद विवाद है इसके कुछ ना कुछ जो योग हैं ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं झगड़े से आपका जो मन है ये अशांत रहे। और उस वक्त चाहे वो जॉब रहे, बिजनेस रहे या स्टडी, आप उन चीज़ों पर ध्यान जो है वो केंद्रित ना कर पाए, तो जुलाई के महीने में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। और वहीं अगर हम बात करते हैं सितंबर में, तो सितंबर में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो कि पैतृक है, इंसेस्टर प्रॉपर्टी है, वो मिलने के कहीं ना कहीं योग इसी तरफ इशारा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं भी पता होता, लेकिन उस वक्त ये कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि वहाँ से आपको जो धन लाभ है ये योग बनते हैं। और वहीं अगर बात करें जो नवंबर का महीना है वो भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, उस वक्त मैरिज के जो योग हैं कुछ अच्छे बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी की जैसे मैरिज नहीं हो रही तो इंसान कई बार सोचता है कब है, तो उस वक्त जो समय है ये समय कुछ अच्छे योग बना रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंह यानी कि लियो के लिए अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो ये साल अच्छा रहने वाला है। जो एक या दो महीने जैसे कि जुलाई में थोड़ा सा मैंने बोला कि वाद विवाद से बचना चाहिए, तो अगर इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि आने वाला जो समय है इनके लिए जो वो है वो शुभ रहेगी।
1: जी जगजीत जी, और लिसनर्स को बता दें कि वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे और भी बातचीत कर सकते हैं, आपसे मिलकर आपसे समय ले सकते हैं ताकि वो जो भी अपने बारे में जानना चाहते हैं हॉरोस्कोप के रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपसे मिलने के लिए आपका फ़ोन है 02103901130, 09278785 आपका लैंडलाइन है। और अगर वो चाहते हैं तो अपना जो डिटेल्स हैं अपने हॉरोस्कोप की वो हमें आपके ईमेल पर भेज सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले प्रोग्राम्स में अपना उनके जो हॉरोस्कोप्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे सकें। तो ईमेल का पता है info@astrologerjagjit.com।

0: जब कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की योजनाओं को या अपने पेशे को किसी ऐसे तथ्य पर गढ़ना चाहता है जिसका उसने खुद मूल्यांकन नहीं किया है, तो बहुत संभव है कि वह सफल ना हो पाए। मूल सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति को सीखना होगा कि किसी मूल सिद्धांत के प्रति सुनिश्चित होने के लिए किस तरह से सोचा जाए। किसी विषय पर सोच विचार या चिंतन करना सीखना कठिन नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही करना है कि किसी विशेष तथ्य के साथ उस भौतिक जगत की तुलना करना सीखना है जिसे हमने जाना है और देखा है। जब आपकी शिक्षा का आधार एकाधिकारवादी होता है, तब आप वास्तविक रूप से शिक्षित नहीं हैं। एकाधिकार सम्मोहन का ही थोड़ा परिवर्तित रूप है। शिक्षा को किसी सजा के डर से की मदद लेकर थोपा जाता है, जिस तरह से जानवरों को जीवित दिखाने के लिए उनके अंदर कुछ भरा जाता है, उसी तरह एक विद्यार्थी के अंदर भी उसके द्वारा स्वयं मूल्यांकित ना किए गए तथ्य भर दिए जाते हैं। शिक्षा के वर्तमान मानदंडों के अनुसार ऐसा छात्र व्यापक जानकारी रखने वाला एवं सुशिक्षित माना जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपनी इच्छा से चुने हुए पेशे में आशातीत सफलता हासिल नहीं करेगा। बहुत ही खूबसूरत विचार। जगजीत जी, आपको फिर से अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और हमारे जो लिसनर्स के सवाल हैं, लिसनर्स ने पूछा है साइन स्टार के बारे में, अपने स्टार साइन के बारे में, आज अभी दूसरा जो स्टार साइन है आप कौन सा लेंगे?
1: जी हाँ, अभी अगर हम बात करते हैं कन्या यानी कि विरगो के विषय में, अगर कन्या राशि की बात करें तो ये साल जो है इस स्टार साइन के लिए है जो अच्छा रहने वाले हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं बुध का सूर्य के साथ सुख स्थान में होना, ये कुछ अच्छे योग बना रहा है। और इनकी जो साल की शुरुआत है जैन में, वो भी अच्छे तरीके से हुई होगी। अगर हम बात करते हैं फेब महीने की, तो फेब में जो चार ग्रहों के जो योग बन रहे हैं वो अच्छे हैं, चाहे वो बिजनेस रहे या जॉब रहे, तो वो अच्छे योग बन रहे हैं। और बिजनेस में आगे जो उसको बढ़ाना है उसके लिए जो समय है ये भी अच्छा रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में या वैसे भी हमारे पारिवारिक में भी कहीं ना कहीं जो धन है वो रुका रहता है, अगर किसी ने लिया वो वापस नहीं हो रहा, या कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में भी रुका हुआ धन वापस नहीं आ रहा, तो उस वक्त का जो समय है ये कुछ अच्छे योग बना रहा है कि आपका जो रुका हुआ धन है वो प्राप्ति होने के जो योग हैं ये बनते हैं। और अगर इसी तरह से मार्च महीने की बात कर, तो

0: मार्च में बिजनेस में थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे योग बनते हैं जिससे कि आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा उत्तेजित हो जाएगा, गुस्सा आना, क्रोध आना शुरू हो जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसमें हानि के जो योग हैं ये बनते हैं। लेकिन फिर भी उस समय जो आपका पारिवारिक जीवन है या वैवाहिक जीवन है वो जरूर अच्छा रहेगा। और इसी तरह से अगर बात करते हैं अप्रैल में भी जो जॉब हैं उनके कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जॉब में कोई ना कोई, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है वो काफ़ी समय से पूरा नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये योग बनते हैं कि जो भी आपने कार्य अपने हाथ में जॉब से रिलेटेड लिया है उसके जो परिणाम हैं वो अच्छे मिलते हैं, वो पूर्ण होने के योग बनते हैं। परंतु उस वक्त जो परिवार है उसके साथ हमें अपने संबंध जरूर अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम अधिक समय अपना उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाएं और परिवार पे ध्यान ना दे पाएं, तो उस वक्त जो समय है परिवार के साथ जो संबंध हैं ये जरूर अच्छे रखने चाहिए। अगर बात करते हैं मई महीने की, तो मई महीने में शनि के कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो कि चंद्र को प्रभावित करेंगे, मन बेचैन रह सकता है, तो उस वक्त हमें धैर्य से जो काम है ये जरूर लेना चाहिए। चाहे उस वक्त आपका जो जॉब है या बिजनेस है या वैवाहिक जीवन है या और भी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं वो अच्छी जरूर रहेंगी, लेकिन फिर भी इस योग के कारण उस वक्त जो मन है कुछ अशांत जो है वो जरूर रह सकता है। अगर जून महीने की बात करते हैं तो जून में स्वास्थ्य का जो ध्यान है ये जरूर रखें, और क्योंकि उस वक्त जो जॉब है उसमें भी कुछ ना कुछ उतराव चढ़ाव के जो योग है ये बनते हैं। कई बार ऐसा भी योग दर्शाते हैं कि इंसान उस वक्त सोचता है कि भाई मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही या मैं जॉब को चेंज कर दूं, तो ये जो समय है वो अच्छा नहीं रहेगा। और इसी तरह से अगर बात करते हैं जुलाई की, तो जुलाई का जो महीना है ये वैवाहिक जीवन के लिए जरूर अच्छा रहेगा, परंतु कई बार ऐसा देखा गया कि हमारी ये इच्छा रहती है कि हमारे जो जॉब में काम करने वाले हैं या हमारे फ्रेंड हैं या हमारे कुलीग्स जो भी हैं उनके साथ हमारे संबंध भी जरूर अच्छे रहें, लेकिन ये समय ऐसा है कि उस वक्त आपके जो संबंध हैं उनके साथ अच्छे ना रहने के जो योग हैं ये बनते हैं। कहीं ना कहीं उनसे किसी भी मैटर पर वाद विवाद हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं अगस्त का जो महीना है, तो इस समय जो जॉब है या बिजनेस है या स्टडी से रिलेटेड भी कोई मैटर है तो ये समय उनके लिए जरूर अच्छा रहेगा। और ऐसे ही सितंबर में अपने स्वास्थ्य का जो ध्यान है ये जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, लेजीनेस रहे, या आप जॉब पर या बिजनेस पर जो ध्यान है ये पूरी तरह से जो केंद्रित है ये ना कर पाएं। और ऐसे ही अगर अक्टूबर और नवंबर की बात करता हूँ, तो जॉब में और बिजनेस में अच्छे जो योग हैं ये बनते हैं, लेकिन उस वक्त जो फैमिली के या घरेलू जो मैटर है वो कुछ अच्छा नहीं है, उसमें वाद विवाद होने से आपका जो स्वास्थ्य है ये ख़राब रह सकता है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि जो ये अक्टूबर या नवंबर का समय रहेगा अपने क्रोध पर थोड़ा सा उस वक्त नियंत्रण रखना चाहिए, परिवार के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे रखने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उस वक्त ओवरथिंक करने लग जाएंगे परिवार के विषय में, जो भी झगड़ा या कोई भी कारण रहता है तो उसका स्वास्थ्य पर जो वो बुरा प्रभाव रहेगा। और अगर हम बात करते हैं दिसंबर में भी, तो उस वक्त भी जो योग हैं अच्छे ही बनते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें या जॉब या बिजनेस के लिए, तो उस वक्त का जो ये योग इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये साल कुछ अच्छा रहने वाला है।
1: जी जगजीत जी, आपसे और भी बातें करते हैं एक छोटे से प्यारे से भजन सुनने के बाद, और उससे पहले हम अपने लिसनर्स के साथ आपका नंबर शेयर करते हैं जो कि

0: हर भी वक्त हमारे प्रोग्राम में कहां बीत जाता है, जी जी से बातें करते करते पता ही नहीं चलता, और हर बार लगता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिसनर्स के जो सवाल हैं अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें, मगर वक्त हमें एहसास करवाता है कि बाकी की बातें अगले प्रोग्राम में। तो जगजीत जी, आपका हमारे साथ हमेशा इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे पता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो बहुत इंतज़ार करते हैं आपका हर सप्ताह इस हमारे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि उनको अपने हॉरोस्कोप्स के बारे में काफ़ी आपसे जानकारी मिलती है और आप काफ़ी जानकारी उनको देते भी हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे लिसनर्स का जो आने वाला वक्त है बहुत अच्छा निकले, और जो वक्त अभी उनकी ज़िंदगी में जा रहा है वो भी काफ़ी अच्छा जा रहा हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हो और इसी वादे के साथ कि हम अपने अगले प्रोग्राम में उनसे फिर से रूबरू होंगे उनके कुछ सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखिएगा, और जगजीत जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।